0: अच्छा अच्छा प्लास्टर
1: प्लास्टर हाँ
0: प्लास्टर नहीं प्लास्टर
1: प्लास्टर अरे
0: पी नहीं
1: ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए,